0: के हो कांची?
1: लाहौरे को फैशन कसूरे?
0: आ तस्ता जावा
1: बाबे कस्तु गम क्यों को हो?
0: लो भनू तो
1: लो
0: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता।

है कस्तो रह छबिना के न हो गम के को किस्त सुंदा फुरंग भई लहरे ढल के को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूल चास लहरे दाई।